0: से बचे हैं, तो इन सारी चीजों को एड्रेस करते हुए हम आपको देते हैं कि भाई ये आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए, इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए।
1: बिल्कुल ठीक।
0: इमिग्रेशन की कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई रिफ्यूज केस है वो डिस्कस करना चाहते हैं, तो एक बार हमारे से जरूर आके रास्ता कीजिए। 19.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, एंड वी आर अ टीम दैट इज नोन फॉर क्रिस्टल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एडवाइस। हेड ऑफिस हमारा पिछले 18.5 साल से है 1137 डेरी रोड पे, 1137 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा में, 410 और डेरी के पास में, और ICC इमिग्रेशन का नंबर है जी 905-461-2424, 905-461-2424। जी अर्शद भाई,
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका एमडी भाई, और फिर नेक्स्ट वीक आपसे बात करते हैं। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। नंबर नोट कीजिए आप, ICC इमिग्रेशन 905-461-2424, 905-461-2424।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में, रابطے کے نمبر 416-593-0003۔ ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے

0: Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga, Dixie or Burnham Thopka intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap take out aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information call Faisal Chatha 905-232-3663. It's 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. अब प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कैनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में मौका हाथ से ना जाने दें अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
1: Just for you, bringing you world's largest Eid festival from May 22nd till May 26th, from 1 p.m. till midnight at Maple Banquet Hall, Mississauga.
2: Fashion show, food, music, variety of stalls, free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
1: Log on to eventsbyteamoftwo.com.
0: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजुर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें 416-566-3642 घर तो सभी ले देंगे अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642 अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी मेहंदी रिसेप्शन बर्थडे पार्टीज कारपोरेट इवेंट्स गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं इन हाउस स्टेजिंग ऑडियो विजुअल सिस्टम 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्स रोड मिसिसागा एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्राइवेट या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन पर्सनल लोन या बिजनेस लोन 100% गारंटीड अप्रूवल कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147 लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं कॉल शिराज हुसैन 647

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein aap tak number 416-593-0003 PSL mein aaj aaram ka din tha. कल इस्लामाबाद और हैदराबाद के दरमियान मैच होगा और जो जीतेगा वो इतवार के दिन खेलेगा पेशावर जलमी से, जो कि ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गए। लास्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद लिए चलेंगे आपको पाकिस्तान, जहां हमारे साथ होंगे सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल जमान साहब। स्टे ट्यून।
3: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अब मिसेस आगा के बाद स्कारबरो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसेस आगा लोकेशन 1110 बलूर स्ट्रीट ईस्ट बलूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-5678 हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे।
4: करम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9582800009 905-828-0009। यो लॉग इन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: Barbecue Tonight ki dusri location 5165 Dixie Road, Dixie aur Emco ka intersection Mississauga mein. 200 se zyada logon ki gunjaish, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेस। जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 905-282-9868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 905-282-9868।
6: जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट लीसास कॉस्मेटिक्स.com।
7: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642। SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. It's 647-321-7444.
8: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
7: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861।
9: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM, students mera contact number 416-593-0003। और जनाब ये वक्त है आपको ले चलने का पाकिस्तान। बिलाल जमान साहब से एंजलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, खुश आमदीद कहेंगे। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम।
10: जी वालेकुम सलाम,
9: क्या हाल चाल हैं आप? खैरियत ठीक ठाक हैं?
10: जी बेहतरीन, बिल्कुल ठीक ठाक।
9: अमरीका ईरान जंग के असरात जनाब, 400 के करीब पेट्रोल पर लीटर हो रहा है पाकिस्तान में। यहाँ भी ऐसे कोई सूरत हाल, ज़रब दे दो इतना ही हो जाएगा तकरीबन। अब बल्कि अमेरिका में भी इसकी प्राइस जो बढ़ रही है, तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को मिलने वाली सब्सिडी में एक माह की तौसी का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म सिंध का भी मोटरसाइकिल मालकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी जारी रखने का ऐलान। अवाम ये सब्सिडी क्या मयसर भी है, और अगर है तो कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? मिला साहब
10: जी, देखें मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो हुकूमत ये टारगेटेड सब्सिडी की बात करते हैं ना, तो टारगेटेड सब्सिडी या तो आप सब्सिडी दें जो कि जनरल हो और सबके लिए हो, तो वो तो देना भी आसान है और लेने वाले को भी पता होता है कि उसको जो है ना वो सब्सिडी मिल रही है। जिस तरह एक दफा हुकूमत ने बिलों के अंदर किया था, यानी कि बेसिकली तो आपने फायदा पहुंचाना है आवाम को, वो किसी तरीके से भी हो सकता है, उनको आपने कंपनसेट करना है। अब आप कहें कि आपने सिर्फ पेट्रोल के अंदर ही कंपनसेट करना है उनको, तो ये जो है ना टारगेटेड सब्सिडी देना जो है ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो पेट्रोल है उसके लिए लाइनों में लगना, पेट्रोल पंप जाना, फिर वो पेट्रोल पंप ढूंढना जो सब्सिडी दे रहा हो, फिर वहां पे जाके जो है ना उस प्रोसीजर को सारा जो है ना फॉलो करना, पहले उसको हुकूमत के लिए जो है ना वो अपने आप को रजिस्टर करना। लोग इस प्रोसेस ही बहुत जो है ना वो घबराते हैं। कुछ लोगों को हुकूमत पे जो है ना वो ट्रस्ट नहीं है, कुछ इसको भी जो है ना वो स्कैम जो है ना वो कंसिडर करते हैं, कुछ लोग इसकी आड़ में जो है ना वो स्कैम जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो देखते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हुकूमत की दी हुई जो टारगेटेड सब्सिडी है उससे फायदा उठा सकते हैं या उठा रहे होंगे। इससे बेहतर है कि हुकूमत जो है ना वो या तो कोई जनरल जो है ना वो स्कीम सामने लेकर आए, जिसे आप जो है ना वो अगर आप जाते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, तो बाइक अगर आपके पास है और आप बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, तो जनरल कोई सब्सिडी होनी चाहिए जो बाइक वालों को जो है ना वो कम रेट के ऊपर जो है ना पेट्रोल डाल कर दें। वरना अगर आप ये कहते हैं कि जी पहले वो रजिस्टर करवाएं और महीने का उनको 2000 मिलेगा, और वो भी मतलब एक प्रोसीजर के थ्रू जो है ना वो मिलेगा, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि इस ऑप्शन को जो है ना वो ऑप्ट करेंगे।
9: ऑलराइट, नॉर्मल पासपोर्ट की फरहमी 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई है, और मुकम्मल कैशलेस निज़ाम भी राज कर दिया गया है पासपोर्ट ऑफिस में। घर में पासपोर्ट डिलीवरी के निज़ाम को भी मौसर बनाया जाएगा। तो क्या पासपोर्ट के हसूल में आसानी और मियाद कम होने की वजह से बनवाने वालों के रश में कमी होगी? ये जनरली 14 दिन पहले भी हुआ करता था जो जनरल टाइमिंग थी।
10: जी बिल्कुल, आप कह लें बहुत अरसा पहले तो ये इतना ही टाइम था।
9: अच्छा।
10: फिर बीच में पिछले साल राउंड अबाउट ऐसा था कि बहुत ज्यादा लोगों ने जो है ना वो वीजे के लिए जो है ना वो अप्लाई करना शुरू कर दिया, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, और वो मतलब एक ओवरवेलमिंग था कि मतलब कि बहुत ज्यादा रश जो है ना वो उसका पड़ गया। तो तब कुछ अरसे के लिए ऐसे हुआ था कि बीच में जो है ना ये जो टाइम पीरियड है वो 21 दिन से भी तजावुज करके कई महीनों पे चला गया था।
9: अच्छा,
10: अच्छा उसके अंदर कुछ लोग ये भी जो है ना वो कह रहे थे कि जो पासपोर्ट के लिए जो पेपर जो है ना जो यूज होता है वो स्पेशल पेपर होता है, स्पेशल इंक जो है ना उसके लिए इस्तेमाल होती है, तो क्योंकि जो है ना वो पाबंदी जो है ना वो लगी हुई थी गालिबन चाइना के ऊपर जो है ना कुछ इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी थी, इस तरह का मामला था, तो वो पेपर और वो इंक जो है ना वो इंपोर्ट नहीं हो रही थी, इस वजह से बीच में जो है ना बहुत डिले आ गया था, कई कई महीने, तीन तीन महीने हो गए थे लोगों को उनके पासपोर्ट जो है ना वो नहीं मिल रहे थे। तो वो जो बैकलॉग लगा हुआ था वजीर आजम ने फिर उसका नोटिस लिया, आपको याद होगा वजीर दाखला जो है मोहसिन नकवी वो खुद जो है पासपोर्ट ऑफिसर्स वगैरह गए, उन्होंने विजिट किया, जाके उन्होंने मामला को देखा और आहिस्ता आहिस्ता वो बैकलॉग जो है ना वो खत्म होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद ये जो जंग जो है जब से लगी है तब से मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज है और जब से जो है ना वो एयरपोर्ट वगैरह बंद हुए हैं, फ्लाइट बंद हुई है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टक हो गए हैं कि अब वीजा ही जो है ना वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है ना वो
9: रश कम होने की वजह से मेखल चीजें ठीक हो गई।
10: जी कुछ रश कम होने की वजह से भी जो है ना फर्क पड़ा है, लेकिन बहरहाल पासपोर्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप जो है ना वो दो हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना वो दे ना सके। हुकूमत को चाहिए कि मेक श्योर करे कि अगर कोई जो है ना वो अप्लाई करता है तो उसको दो हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना वो अवेलेबल हो। मैंने तो अपना रेगुलर जो है ना वो रिसेंटली अपना आईडी कार्ड जो है ना वो अप्लाई किया था, वो एक महीने बाद आया, तो मुझे बड़ी हैरत थी कि मतलब ये आईडी कार्ड क्या ऐसी चीज है, वो तो आपको जो है ना मतलब हफ्ते के अंदर अंदर जाना आपको अवेलेबल होना चाहिए। मेहल
9: अब नादरा की जो बनते में चिपें वेपें लगती हैं उसमें मेहल वो थोड़ा सा इसलिए टाइम लेते हैं शायद, मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा, आपको पता, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं क्योंकि कार्ड थोड़े से
10: दरार नहीं, आप सही कह रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो मेरे ख्याल से अगर आप बैंक के अंदर भी जो है ना वो अप्लाई करें उसके लिए
9: कार्ड
10: एटीएम कार्ड के लिए तो वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है।
9: वेरी गुड।
10: तो कम से कम जो है ना हुकूमत को चाहिए इस प्रोसेस को जो है ना वो एक महीने से कम करके दो हफ्ते जो है ना वो बड़ा मतलब एक हफ्ता दो हफ्ता बड़ा मिनिमम जो है ना वो टाइम पीरियड है इसके अंदर अंदर होना चाहिए,
9: लेकिन अभी कर तो दिए ना, चले ठीक हो गया। अच्छा सर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड ने ए लेवल रियाजी का जो मैथ का पेपर था उसे आउट होने की तस्दीक कर दी है, और हम ये ऐसे वाकयात की फौरी और मुकम्मल तहकीकात करते हैं। कैम्ब्रिज ने ये ऐलान की जारी उनका अलामिया था, कराची में तलबा से पर्चा इंटरनेट पर पहले ही देखे जाने की इतला दी थी, पर्चा आउट होने से कैम्ब्रिज की साख को कितना नुकसान पहुंचेगा और तलबा के मुस्तकबिल के क्या असर पड़ेगा, तो मतलब सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए फिर, अब तो कोई भी इदारा हो तो फिर।
10: जी देखें, ये पेपर कहाँ से आउट हुआ, आप ये वो कह रहे हैं कि और एक हफ्ता उनको चाहिए वो मजीद तहकीकात करके जो है ना वो इसको, वो कहते हैं कि हम सामने मंत्री यहाँ पर भी लेकर आएंगे, क्योंकि कैम्ब्रिज सिस्टम जो है ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो लागू है और पूरी दुनिया उसको जो है ना फॉलो करती है, पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल से 2-2 लाख रुपया इनके जो है ना वो एग्जाम की जो है ना वो फीस होती है, और लोग जो है ना मतलब के जो अपने बच्चों को जो है ना कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर पढ़ाते हैं ओ लेवल ए लेवल के जो एग्जाम वगैरह देते हैं काफी एक्सपेंसिव जो है ना वो इनका एग्जाम होता है, तो अगर आपके बच्चे आपके बेसिकली तो आपने कम्पीट करना है और आप पूरी दुनिया को कम्पीट कर रहे होते हैं, और जब इसके रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो आपको याद होगा कि 1-2 साल पहले एक पाकिस्तानी बच्चा था जिसने जो है ना वो टॉप किया था और तमाम एज जो है ना उसने जो है ना वो लिए थे, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इसका कंपटीशन होता है, लेकिन अगर पेपर पहले ही आउट हो तो आपको क्या एतबार है कि आपके बच्चे ने सारा साल जो है ना वो लगा के मेहनत जो है ना वो की और किसी ने जो है ना वो पर्चा जो है ना वो पहले से देख के तो वो उसको जो है ना वो तो आपका आपका कॉम्पिटिशन तो जो है ना वो खत्म हो गया उसके अंदर, तो बहरहाल वो बच्चों ने इसलिए जो है ना वो एतराज किया क्योंकि ये कैम्ब्रिज सिस्टम जो है ना वो ऐसा है ये रट्टा सिस्टम के ऊपर जो है ना वो नहीं चल रहा होता, यहाँ पे बाकी ही जो बच्चे हैं जो बड़े ब्रिलियंट और बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार जो बच्चे हैं वो इस सिस्टम को जो है ना उन्होंने ऑप्ट किया होता है, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर जो है ना वो शिकायत भी की और उन्होंने जो है ना इसके ऊपर एहतजाज भी किया जिसकी वजह से कैम्ब्रिज जो है ना इसकी इसके ऊपर जो है ना वो तहकीकात कर।
9: अच्छा ना, दफ्तर खारजा ने कहा कि आबनाए हुरमत सबके लिए सामान की तरसील की अहम गुजरगाह है, इससे हम खोलने जो फौरी तौर पर खोलने के मुतालबे से मुतफिक है, पाकिस्तान का ये कहना है, इस मुतालबे का क्या मतलब, वैसे सारे ही मुतालबा कर रहे हैं, सभी ये कह रहे हैं, अमरीका भी ये कह रहा है, तो पाकिस्तान के अमरीका की हिमायत कर रहा है या पाकिस्तान का असूली मौकफ है ये?
10: ये देखिए, एक टिल्ट तो आपको लगता है कि इस मुतालबे से कि ये जो है ना शायद अमेरिका की हमायत के अंदर जाता है और ईरान के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि ठीक है कि ईरान ने भी कोई विलिंगली या कोई जो है ना मतलब कि बड़ी खुशी खुशी जो है ना वो ये एकदम नहीं उठाया हुआ, लेकिन इसके बावजूद कुछ जो जहाज हैं वो तो पहले दिन से जो है ना वो बड़े
9: जा रहे हैं, बल्कि आज पाकिस्तान का खैरपुर जहाज है वो भी डीजल लेके जो है वो निकला वहां से आज
10: निकला है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को साइमल्टेनियसली जो है ना वो दोनों की मजम्मत करनी चाहिए, आपने हुरमस के बंद करने की, पर जो अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है उस नाकाबंदी की वजह से जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट हुई है, वरना उससे पहले जो ममालिक इस जंग का हिस्सा नहीं थे उनके जहाजों के ऊपर जो है ना वो कोई पाबंदी नहीं थी। इटली के जहाज निकले हैं, जापान के जहाज निकले हैं, इंडिया के जो है ना वो जहाज निकले हैं, रशिया के जहाज, चाइना के जहाज जो है ना वहां से गुजर रहे थे, पाकिस्तान के जहाज वहां से गुजर रहे थे, सिर्फ जो है ना वो ईरान ने पाबंदी लगाई थी कि जो ममालिक ईरान में अमेरिका की जंग में इसराइल की जंग में जिन्होंने अमेरिका की हमायत जो है ना वो किया उनका जहाज जो है ना वो हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, तो वो बहरहाल जो है ना वो उनका हक है, जो लोग जो उनके ममालिक उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं उनको उनको जो है एहतजाज करना चाहिए, वो कहेंगे जी मतलब इसको खोलना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो है ना वो न्यूट्रलिटी को बरकरार रखते हुए दोनों तरफ का मामला जो है उसको
9: करना
10: जो है ना वो
9: ठीक
10: जिक्र करना चाहिए।
9: इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तीन जजेस के तबादलों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, मतलब जजेस जो है जजेस के पास ही चलेंगे, मतलब वैसे तो वकला ने ये चैलेंज किया है, तो जजेस का ट्रांसफर आयन के आर्टिकल 2A के मुनाफी है, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया है, आइनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली अदालत केस नहीं सुन सकती, ये मौकफ भी उनका है। आया केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या आइनी अदालत, या क्या लाहौर हाई कोर्ट बार के पिटीशन कोई अहमियत भी है, सुनेंगे भी कि नहीं, इंटरटेन भी करेंगे कि नहीं, मुझे तो लगता है इंटरटेन शायद ना करें।
10: जी जी सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये पहले भी एक मामला हुआ था जब इसको 28वीं आईनी तरमीम को ही चैलेंज कर दिया गया था, तो बल्कि 27वीं आईनी तरमीम को भी जो है ना वो चैलेंज किया गया था, तो आइनी अदालत ने ही उस केस को सुना भी था और सुन के ये जो है ना उसके ऊपर जजमेंट भी जो है ना पास की थी कि जब एक कानून बन गया है तो जब तक वो कानून एग्जिस्ट कर रहा है अदालत के ऊपर लाजिम है कि वो उसी कानून को जो है ना वो फॉलो करे। तो ये एक बड़ा मतलब कि टेक्निकल जो है ना वो पॉइंट था, जब तक जजेस खुद एहतजाज नहीं करेंगे, और मैंने पहले भी इस पॉइंट को जो है ना वो रेज किया था कि जजेस एहतजाजन इस्तीफा देकर घर नहीं चले जाते और एक अदलिया का क्राइसिस जो है ना वो पैदा नहीं हो जाता तब तक अदलिया के अंदर कहीं किसी के अंदर जो है ना वो इसके अंदर जो है ना कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा, या फिर वकला जो है वो एक बड़ी हड़ताल जो है वो इसके ऊपर जो है ना वो नहीं करते और अदालती बाइकॉट जो है ना वो नहीं करते तब तक जो है ना
9: आपको लगता है ऐसा होगा।
10: मैं जो पॉइंट जो है ना रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब तक हकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और हकूमत इसको रिवर्स नहीं करेगी तब तक अदलिया जो है वो बेबस और मजबूर है कि कानून जो बन चुका हुआ है वो उसने उन्होंने उसी को फॉलो करते हुए जो है फैसले करने।
9: चलें ना अब लाइव कॉल्स आपके ले लेते हैं, स्टूडियो में रबते के नंबर 416-593-0003। अच्छा 6536 सबसे पहले कॉलर थे, अगर आप बात करना चाहें 6536 आप बात करना चाहेंगे 6536 लास्ट 4 डिजिट्स 6536 मैं सुन रहे हैं। चले 5415 सर आप ऑन एयर हैं, 5415
11: जी अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम
11: आप ठीक हो कि आरे ठीक हो
9: जी जी बिल्कुल।
11: अच्छा पहला तो ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਨੌਵਾਂ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਧਾ
9: ਨਾਚੇਗੀ
11: ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਖਵਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਮ ਇੰਜ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਜੱਜ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਆਦਾ ਹਜ਼ਾਰੋ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਐਸੀ
9: ਹਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੇ
11: ਤੇ ਉਹ ਦਮ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਭਾਵੇਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰਮਸ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਨਮੀ ਸਟੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਏਰੀਏ ਮੈਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਰਮਸ ਟਾਕੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਦੇ ਅਰਮਸ ਟਾਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ
9: ਜੀ?
11: ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਔਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸਾਂ ਇਹ ਅਜ਼ਰਾਏ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਕਾਲਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਹੈਲਥ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਰਨ
9: ਦਾ
11: ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਜੈਂਡਰ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ
9: ਨਹੀਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
11: ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਂਡਰ ਕਰਨਾ 6 8 ਕਰ ਲਓ 10 ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕਾਲਰ ਪਤਾ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾਨਸ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਨ
9: ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 7997 ਸਰ ਆਪ ਆਨ ਰਹੇ ਨੇ 7997
12: कैसे हैं आप
9: जी बिल्कुल ठीक सर शुक्रिया
12: देखिए जनाब बात यह है कि ये ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग है बेसिकली ये इजराइल ने ट्रैप किया अमेरिकन को
9: ठीक है
12: और ईरान ने जो मिस्टेक की है ना और ईरान बहुत टाइम तक इसको पे करेगा और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं जो सियासी है या जो भी है नीचे ऊपर जो पावरफुल लोग हैं वो भी मिस फायर किया उन्होंने क्योंकि हारना हरमस किसी की मिल्कियत नहीं है वो इंटरनेशनल रूट है ईरान का कोई राइट नहीं बनता था कि वो जगह उसको बंद करे अब उसकी वजह से देखे मिडिल ईस्ट में कितने प्रॉब्लम होने जा रहे हैं हम जो है बरसों इसको भुगतेंगे हमारी क्लियर लाइन होनी चाहिए न्यूट्रल और किसी इस टाइप की चीज को हम सपोर्ट नहीं कर सकते ईरान ईरान है करे लेकिन ईरान की मिस्टेक है और अब उसने जो ये सऊदीया पे मार दिया उसको मार दिया दुबई को मार दिया ये जो अरब और नॉन अरब का जो रिश्ता है ना वो और डीप कर दिया है और हमारे लिए एक और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है आप देखेंगे आगे आगे तो अभी तो कोई बात नहीं करते लोग लेकिन आगे नजर आ जाएगा अभी हम 400 रुपए में ले रहे हैं ना पेट्रोल अगर कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान में एक आदमी की जो दिहाड़ी है 1500 रुपए में वो 3 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं ले सकता और अगर यहाँ से कंपेयर जो लोग करते हैं ना अरे यहाँ भी महंगाई हो रही है तो यहाँ 16-18 डॉलर एक घंटे का है उसमें मैं 8 लीटर या 5 लीटर वो पेट्रोल ले सकता है फर्क समझ जाए ये फर्क होता है और नहीं होता है चलिए
9: ठीक है थैंक यू 5794 सर आप फोन ले रहे हैं 5794
13: السلام علیکم جی
9: جناب صاحب
13: بٹی صاحب بات تو نظر آ رہی ہے کہ معاملات کچھ بگڑ ہی رہے ہیں لیکن جب تک یہ کوئی واضح ان کی کوئی شکل سامنے نہیں آ جاتی تو لوگ اپنے اپنے معاملات پہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جنرلی تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ امریکہ پہلے بھی کہتا تھا کہ میرا ہرمز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرے پاس بڑا تیل ہے وینزویلا ہے جو مرضی آؤ پھر اس نے مقصد یہ کام کر دیا کہ بند کر دیا اب ایران جو ہے وہ بھی ادھر ہے اب یہ لڑائی اب کیا شکل اختیار کرتی ہے یا پھر ختم ہوتی ہے تو یہ تو ابھی دیکھنا ہے ایسے ہی خیالات جو جس کے ساتھ ہمدردی ہے وہ اس طرح کے اس کے خیالات کا اظہار کر دیتا ہے لیکن میں سمپل یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ہمیشہ انشاءاللہ ایران کی کوئی بہتری کی بات ہی کرے گا اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر کل کوئی ایران کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ پھر اور نزدیک آ جائیں گے پاکستان کے تو پھر پاکستان کے خلاف انڈیا ہو اسرائیل ہو یا افغانستان ہو تو پھر پاکستان کو زیادہ تکلیف ہوگی تو اس لیے ہمیشہ پاکستان کی یہ اولین خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ ایران کے ساتھ ہم بہتر طریقے سے ہی اور پھر ہمارا مسلمان بھائی ہے تو یہ معاملات ابھی چلیں گے دیکھیں اب کیا مقصد سٹینڈ کوئی لیتا ہے اور اس معاملے میں کیا کیا معاملات چلتے ہیں لیکن چلیں آپ کیا زیادہ بات کریں کل فرائیڈے ہوگا تو پھر تھوڑی سی بات زیادہ کر لیں گے آپ دوسرے لوگوں کو دے موقع انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تھینک یو ویری مچ تھینک یو
9: 6141 سر آپ پہنچ رہے ہیں 6141
14: السلام علیکم بڑی صاحب بلال
9: جی جی
14: بڑی صاحب ہم لوگ بہت سنتے تھے یہ بات کہ پاکستان کو کسی ایک میں سے چننا ہوگا چائنا یا امریکہ یا اس طرح اور بہت سارے جو مطلب جن کی مخالفتیں ہیں آپس میں کہ پاکستان کو یہ چننا ہوگا وہ چننا ہوگا میں نے یہ دیکھا ہے اور میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ پاکستان جو ہے اپنی انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتا ہے اور کسی کی اس طرح سے پرواہ نہیں کرتا کہ اپنے فیصلوں کو کسی کی خوشی یا خفگی کے لیے بدل دے بھلے یو اے ای ہو یا کوئی اور ہو سعودی عربیہ بھی ہو ایران ہو کوئی بھی ہو اور بڑا سالڈلی اپنے فیصلے لیتا ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے پاکستانیوں مبارکباد کے مستحق ہیں بلال بھائی دیکھیں اگر فرض کرو پاکستان کو آج تک رکاوٹ نہیں آئی کسی ڈلیوری میں پیٹرول کا ہو گیس کا ہو اگر نہیں آئی نہیں سنا ہم نے تو پھر پرائسیں اتنی اوپر کرنے کی کیا تک بنتی ہے کچھ ہمیں وضاحت کریں آپ بہت شکریہ آپ
9: بلال صاحب کیوں پھر کیا وجہ ہے مطلب میں تو جب اس حوالے سے بات کرتا ہوں جی میری بات بھی وہاں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بظاہر ہمیں جو پیٹرول ہے اس کو ذخیرہ کرنا ہے پاکستان جہاں پہ موجود ہے اس کے بہت سے مسائل ہیں اس کو اپنی فورسز کے لیے جو پیٹرول ہے وہ ہر حال میں اس کو اس کا جو مطلب ٹارگیٹ اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہونا ہوتا ہے ویسے کیا وجہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں جب آ رہا ہے ان کا پیٹرول یا نہیں آ رہا مطلب اپنے حرمز میں کچھ نہ کچھ بندش ہے کچھ
10: نہیں دیکھیں جی بندش اگر بڑا سادہ سا فارمولا ہے کہ اگر بندش ہو نا تو پھر تو اویلیبل ہی نہ ہو جو دوسرے ملک ہیں ان کا تو یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ تو یا تو شارٹیج ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت نے پرائسز انکریز نہیں کی بنگلہ دیش نے پرائسز انکریز نہیں کی تو وہاں پہ تو شارٹیج ہے نا مطلب اویلیبل ہی نہیں ہے تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا آ تو رہا ہے لیکن جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز انکریز ہو رہی ہیں ہمارے پاس جو اسٹاک ہے وہ 21 دن کا ہوتا ہے 21 دن سے اگلا جو آپ نے آرڈر دینا ہے وہ آج آپ پرائسز انکریز کریں گے تو اگلے 21 دن کے بعد خریدنے والا آپ کے پاس پیسے موجود ہوں گے نا وہ تو انہوں نے بڑا مطلب ہے کہ اس کو حالانکہ وہ اپوزیشن میں ہیں مفتا اسماعیل انہوں نے جو ہے نا یہ لاجک ایکسپلین کیا انہوں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں جی پرائسز آپ کے پاس جب 21 دن کا اسٹاک ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ جو سستا پٹرول تھا اس کے لیے آپ نے ریٹ کیوں بڑھا دیا اس کے لیے ریٹ نہیں بڑھایا 21 دن بعد کا جو آپ نے پٹرول خریدنے کا جو آج آپ نے آرڈر دینا ہے وہ تو آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے دینا ہے نا جو وہاں پہ ریٹ اس ٹائم آج جو چل رہا ہے وہاں پہ تو وہ ریٹ آپ آج لوگوں سے لیں گے تو آپ اس کا آرڈر جو ہے نا وہ دے سکیں
9: گے اچھا ہمارا انکمنگ کالز جو ہیں وہ تھوڑی سی میرے خیال میں سٹک ہیں مجھے وہ ایک ہی جگہ پہ ساری کھڑی ہوئی ہیں تو میں ایک موقع کا فائدہ اٹھاتا ہوں ایک سوال اور کر لیتا ہوں پراپرٹی کی پرائسز لاہور میں کیا ہیں مطلب اس دبئی کی صورتحال اوور آل صورتحال کے وجہ سے بڑھی ہیں کم ہوئی ہیں کس طرح سے کیونکہ بہت سے لوگ انویسٹ کرتے ہیں یہاں سے وہاں
10: جی دیکھیں پاکستان میں اگر جو ہے نا ابھی ایف بی آر نے کل جو ہے نا چیئرمین ایف بی آر بھی ذکر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نیا میکینزم جو ہے نا وہ لے کر آ رہے ہیں کہ سسٹم مطلب لوگ فائل ہی نہیں بھیج سکیں گے
9: سسٹم ہی ختم کر دیں گے ہاں بالکل
10: ہاں مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں اس چیز کے اوپر لیکن دیکھیں جی آج تک جو ہے نا مطلب یہ تو 20 سال ہو گئے ملک ریاض نے یہ کام شروع کیا تھا بیریا ٹاؤن سے فائلیں بیچنے کا اس سے پہلے تو کانسیپٹ ہی نہیں پتا تھا کسی کو یہ فائلوں کا کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد تو ایسا ایک بھیڑ چال فراڈ کی جو ہے نا وہ چلی ہے کہ کل ہی میں ایک اتفاق کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد کے اندر 10 سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں فائلیں بیچی اور آن گراؤنڈ جن کی ڈیولپمنٹ اچھی ہے اور جو آن گراؤنڈ مطلب یہ کہ بیسیکلی آپ کو یہ دیکھنا ہی چاہیے کہ جہاں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ آن گراؤنڈ پلاٹ بھی اویلیبل ہیں یا
9: نہیں چلے یہ تھوڑا سا میخل ہوا ہے صحیح ایک نمبر میں نظر آ رہا ہے 8156 ان کو لے لیتے ہیں 8156 سر آپ پہنچے ہیں
15: ہیلو
9: جی جی سر
15: لیکن جی پاکستان میں پیٹرول کی پرائز اس لیے زیادہ ہے کہ سارا ٹیکس پیٹرول سے جمع کیا جاتا ہے پیٹرول پہ لیوی کتنی ہے یہ بتا دیں میرے خیال ہے 155 کچھ ہے
9: چلے
15: عمران خان کے زمانے میں 15 روپے تھی لیوی
9: اب زیادہ ہو
15: زیرو کر دیا تھا اور یہ سارا ٹیکس کیونکہ وہ ایکسپورٹ نہیں ہے کچھ وہ نہیں ہے
9: پیٹرول سے سب ٹیکس جمع ہے اس لیے یہ چلیں ٹھیک سر تھینک یو 5666 میں بات کریں جی جی
16: میں جناب بالکل جناب میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس وقت بالکل مذاکرات میں آنا چاہیے اور پوری طرح بیٹھنا چاہیے دیکھیے پوری دنیا کو پاکستان پہ بھی.
9: چلیں ٹھیک سر, تھینک یو, بہت شکریہ شجاع بھائی. براد صاحب تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, انشاءاللہ کل پھر ملاقات کرتے ہیں آپ سے.
10: تھینک یو.
9: لسنرز آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ, اجازت چاہیں گے آپ سے, دعاؤں میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کھوڑنے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ کیونکہ سب اچھی کی آواز بشرط زندگی. انشاءاللہ ہماری ملاقات اب کل شام 7 بجے اسٹوڈیو انجینئر مریم, میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ اور سپرد مولانا.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جو ہے وہ آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروائیں گے جو ملٹیپل ڈائریکشن میں بے پناہ کام کریں گے۔ ایک بڑی زبردست لیڈرشپ ہے نارتھ امریکہ کے اندر، یو ایس اے کے اندر اسپیشلی، اور پیشے کے حساب سے جو ہے ڈاکٹر ہیں، بچوں کے جو ہے نا اسپیشلسٹ ہیں، پیڈیاٹرک ہے، میری لینڈ فیکلٹی جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کے ممبر بھی ہیں، سرو کرتے ہیں وہاں پر، جو ان کا میری لینڈ اسکول آف میڈیسن ہے اس کے اندر سرو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی ریسرچ پیپر لکھے ہیں، وہ ریسرچ پیپر پبلش ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ڈاکٹری کے علاوہ جو ان کے کام ہیں، وہ جناب ایک بہت بڑی اسلامی تنظیم ہے، اس کے کئی دفعہ پچھلے 4 سال پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، پھر ایک ہیلپنگ ہینڈ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، چیئرمین رہے ہیں، بہت سارے پولیٹیکل اور سوشل کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ اور ابھی جو تازہ ان کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب کہ کراچی کے اندر ایک بڑا انہوں نے نیورولوجسٹ ہاسپٹل بنایا کنڈر کے نام سے، اور یہ ایک امیزنگ ہاسپٹل ہے، اس کی رودات بھی سنیں گے اور یقیناً بتائیں گے ناظرین کو کہ یہ ہاسپٹل جو ہے وہ جو پاکستان اور کراچی جیسے شہر کے اندر جو ہے نا بہت ضروری تھا، اور پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا ہاسپٹل ہے جو اس طریقے سے بنایا گیا، اس کی ڈیٹیلز ہم یقیناً ان سے لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جناب امریکہ اور ایران اور یہ جو فائنینشیل برڈن جو آیا ہے، اور 9/11 کے بعد جو مسلمانوں نے 25 سال کا سفر طے کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں اوور آل، کیا وہ خوف کے سائے ختم ہو گئے، جو کہ خوف کے سائے مسلمانوں کے اوپر، ابھی مسلمان ڈرتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ کینیڈا کے اندر خود بھی اسلام فوبیا کے آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال زندگی کا سفر رواں دواں ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ پچھلے 25 سال کا جو سفر ہے وہ محسن، ڈاکٹر محسن انصاری کی آنکھ سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو آئیے جناب ڈاکٹر محسن انصاری سے ملتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محسن انصاری صاحب ہیں، ان کی ابتدائی کے اندر میں نے ان کا ایک بڑا تفصیلی قسم کا جناب ایک انٹرو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اور امید ہے کہ جناب اتنی ساری چیزیں مجھے خود بھی یاد نہیں تھی، بہت ساری چیزیں اس میں بھول گیا، لیکن بہرحال ڈاکٹر محسن انصاری صاحب جو ہیں اس وقت نارتھ امریکہ کی ایک بڑی لیڈرشپ ہیں، اور ایک بڑی اسلامک آرگنائزیشنز کی لیڈرشپ کرتے رہے ہیں، آج کل بھی جو ہے وہ گورنمنٹ اور لیجسلیٹو افیئرس کی جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ابھی آج جو ہے نا ابھی نئے نئے پاکستان سے بھی آئے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور وہاں کیا کیا ہے تو اسی حوالے سے بہت ساری چیزوں سے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن میرا پہلا سوال جو ہے ڈاکٹر منصور انصاری صاحب، پہلے تو یہ کہ بہت بہت شکریہ ٹورانٹو 360 کو ٹائم دینے کا آپ کا، اور وقت دینے کا، کیونکہ بڑا قیمتی وقت ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، پھر بچوں کے ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں، پھر میری لینڈ اسکول جو ہے فیکلٹی اس کے اندر آپ جاتے رہتے ہیں اور جاب بھی کرتے ہیں، اتنے سارے کام کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو آج پوچھوں گا میں آپ سے ویسے اتنا وقت نکالتے کیسے آپ، تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: تو آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ وقت ایسے کیسے نکالتا ہوں،
0: پہلے تو یہی بتائیں،
1: میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ سوال ہے جو مجھ سے سب زیادہ کیا جاتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ فیملی، جاب، اور اس کے ساتھ، یہ دونوں میرے پارٹ ٹائم جابز ہیں، فیملی اور جاب، میرا فل ٹائم جاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی وقت دیا ہے اس میں اللہ کی زمین پہ دین کا کام کرنا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی ایک بہت ہمبل کوشش جو ہم کر رہے ہیں۔ تو میرا جو پرائمری جاب وہی ہے، پاکستان میں ہمارے جو مینٹور تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا دین پہ چلنا، سید منور حسن صاحب، انہوں نے بچپن میں دماغ میں ڈال دیا تھا کہ کریئر جو ہے انسان کا، وہ کریئر تو اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ پارٹ ٹائم کریئر ہیں۔ That's what we try to do.
0: الحمدللہ، نو اللہ، بہت اچھی بات کی تھی منور صاحب، بڑی عظیم شخصیت، ظاہر بات ہے ہم سب لوگ بڑے احترام کرتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ساری زندگی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو بڑی دو تین اہم باتیں ہیں، کیونکہ جو صورتحال اس وقت دنیا کے اندر منظرنامہ اس وقت موجود ہے، اور ظاہر بات ہے مسلمانوں کی ایک اپنی ایک پوزیشن ہے دنیا کے اندر، وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہو یا پاکستان کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال نارتھ امریکہ کے اندر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی یہاں پر رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس نے ایک پارٹ بھی پلے کرنا ہے۔ تو پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ 9/11 کے بعد اسپیشلی، کیونکہ ظاہر بات ہے 9/11 ایک ایسا ایرا تھا जिसके अंदर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, प्रोसिक्यूशंस भी हुई हैं, झूठे मुकदमात भी बने, एयरपोर्ट्स के ऊपर भी हमारे से ज़्यादती होती रही हैं, जॉब सेंटर्स के अंदर भी होती रही, बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी जगह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वेस्ट के अंदर, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में भी और पूरे वेस्ट के अंदर। तो 9/11 के बाद का जो सफ़र है, तकरीबन 25 साल गुजर गए हैं, 2.5 डिकेड हमने गुजार दिए, उससे लेकर आज तक, आप पूरे मंजरनामे को मुख्तसरन कैसे बयान करेंगे?
1: आरिफ जंगी साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं, मेरा ख्याल है कि इस पे बात कर भी सकता हूँ, क्योंकि 9/11 जिस वक्त वाकया हुआ, तो मैं अपने अस्पताल में सुबह 8 बजे 8:30 बजे राउंड कर रहा था, पेशेंट के कमरे में मौजूद था, और पेशेंट को देख रहा था, ये मैरीलैंड के एक अस्पताल में, तो वहाँ टीवी लगा हुआ था उसी बेड के ऊपर पेशेंट के, और उसमें ये धमाका खेज खबर चल रही थी, वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जहाज टकराया और उसकी खबरें, और जो टीवी का इनिशियल रवैया था, तो पहली चीज मेरी तरह मेरे दिल में आई, और मेरा ख्याल है हर मुसलमान के दिल में आई, रहने वाले मगरिब के, कि काश ये मुसलमानों की हरकत ना हो, यानी ये खौफ, एक अंदेशा फौरन दिल में जागा, आई होप इट इज नॉट अ मुस्लिम, और दीज आर नॉट मुस्लिम्स हु आर डूइंग दैट। फास्ट फॉरवर्ड 2 दिन पहले, अभी ट्रम्प साहब के जो डिनर पे हमला हुआ, और खबर एकदम से आई, उस वक्त मैं एक मीटिंग में था, वहाँ किसी ने अनाउंस किया कि प्रेसिडेंशियल डिनर में हमला हुआ है, तो 25 साल गुजरने के बाद भी पहला दिल में ख्याल ही आया कि काश ऐसा ना हो कि इसमें कोई मुसलमान मुलव्वस हो। तो 25 साल बाद भी वो खौफ हर मुसलमान के दिल में मौजूद है, द वे वी आर सीन, द वे वी आर ट्रीटेड, और जो अंदेशे हम सबके दिलों में और हम सबके जहनों में हमेशा से रहे, वो आज भी मौजूद है, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें चेंज हुई हैं, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। उस वक्त 9/11 के बाद मुसलमान, जब ये वाकया हुआ, तो डर गए, सहम गए, और बहुत सारे लोग तो खुद ही मुल्क छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया, बहुत सारे लोगों पे मुकदमात बनाए गए, और जो लोग बिल्कुल जायज तरीके से इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुजर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया गया, और बहुत ही ज्यादा गैर मुनसिफाना रवैया अख्तियार किया गया। उस वक्त मुसलमान डरे, उस वक्त मुसलमान सहमे, उस वक्त मुसलमान खौफजदा हुए, ख्वातीन ने अपना हिजाब करना छोड़ दिया, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी दाढ़ियां शेव कर दी, हत्ता के बहुत सारे लोगों ने अपने नाम तब्दील कर दिए। ये एक वो दौर था जिसमें कई साल हम उस जहनी डिफीटेड माइंड सेट के तहत हमने गुजारे। उसके बाद बहुत सारी और मुश्किलात भी आती रही, इस्लामोफोबिया उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन वो शक्लें बदलता रहा, पहले वो इस्लाम की दुश्मनी, जो एंटी इस्लाम एलिमेंट था, वो वहाँ भी इस्लाम के खिलाफ चलता था। उस जमाने में 9/11 के बाद जो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा था और अमेरिका के लोगों को खौफ दिलाया जाता, वहाँ भी इस्लाम से था। उसके बाद हालात बदले, वहाँ भी इस्लाम से निकल के वो तालिबान इस्लाम का खतरा लोगों के सामने आया। जब तालिबान इस्लाम की जो हदफ पूरा हुआ, तो फिर सद्दाम हुसैन के इस्लाम का एक खौफ लोगों के दिलों में डाला गया, और जब सद्दाम हुसैन के खौफ से निकले, तो उसके बाद इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ एक फजा बनाई गई। ये लोग जिन्होंने इस पे बरसों काम किया है, रिसर्च किए, थिंक टैंक में काम करते हैं, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। अभी रिसेंटली अमेरिका में एंटी शरिया कैंपेन चल रही है, और ये जो प्राइमरी इलेक्शंस हो रहे हैं, होने जा रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के, हमें, क्योंकि मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट रिलेशन से है और मैं पीआर कंपनी से भी रहा रहता है, गवर्नमेंटल एजेंसी से भी रहा रहता है, थिंक टैंक से भी रहा रहता है, फॉर द फैक्ट वी नो रिपब्लिकन पार्टी का पूरा इलेक्शन का मंशूर जो कंसल्टेंट कंपनी बनाती है उसने, उन्होंने कहा कि जब ट्रंप आ गया और इमिग्रेशन अब बैक बर्नर पे चला गया है, क्योंकि इमिग्रेशन के खिलाफ वो इतनी कार्रवाइयां कर रहा है कि इट्स नॉट एन इश्यू एनी मोर, यानी वो टारगेट नहीं है, वो इमिग्रेंट टारगेट नहीं है, क्योंकि उनकी तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो कौन सा ऐसा दुश्मन सामने खड़ा किया जाए जिसके नतीजे में वोट घसीटे जाए, जिसके जरिए उसे खौफ पैदा किया जाए दिलों में, क्योंकि दिस इज द स्टाइल ऑफ पॉलिटिशियंस दैट दे
0: अच्छा,
1: फियर।
0: एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, जिमनी सा है, क्योंकि आपकी गुफ्तगू के दौरान ये सवाल उठ मेरे जहन में आया। सवाल ये है कि मुसलमानों की तादाद तो इतनी बड़ी नहीं है पूरे यूएस के अंदर, 3% होगी, 4% होगी, और जाहिर सी
1: जी
0: बात है कि इलेक्शंस के अंदर जो वोट डालने वालों की तादाद तो वो एक बहुत बड़ी है। तो फिर इस मुसलमानों के खिलाफ इतना एंटी रवैया क्यों है अमरीका के अंदर? सवाल ये एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, तो इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि वो डरते हैं कि मुसलमान शरिया आ जाएगा, इस बात से भी ताल्लुक नहीं है कि मुसलमान हुकूमत में आ जाएंगे, सिर्फ दे नीड एस्केप गोट, किसी से खौफ दिलाना है
0: अच्छा।
1: ताकि वोट वोट हासिल किए जा सके। तो उसकी शक्लें बदलते रहे हैं ना, वो वहाबीज्म से लेकर, और ईरान हमेशा से एक बहुत बड़ा इविल और शैतानी उसको किरदार, कोई टीवी चाहे वो डेमोक्रेट्स
0: एक्सेस
1: हों चाहे
0: एक्सेस ऑफ इवल, एक्सेस ऑफ इवल का लफ्ज इस्तेमाल
1: एक्सेस
0: हुआ है
1: ऑफ
0: अभी।
1: एविल, बिल्कुल यही
0: बिल्कुल
1: एग्जैक्टली। तो उसमें हम जो हैं अब मौजूदा, जो मैं आपको बता रहा था, जो उनका थिंक टैंक है और जो कंसल्टेंट कंपनी है, उन्होंने सारे रिपब्लिकन्स को कहा कि भाई सारे हदफ खत्म हो गए हैं, इस वक्त इस्लाम को टारगेट बनाओ, मुसलमानों को टारगेट बनाओ, हत्ता के उसके नतीजे में कई रियासतों में उन्होंने बिल पास किए हैं, मुसलमान तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, मुसलमान हत्ता के मुसल आप सोचिए ना, लुक एट दिस, लुक दे कॉल देम डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट्स इन अ सेंस दे आर फॉलोइंग द डेमोक्रेसी, कि टेक्सास के स्कूलों में जहां बच्चों को खाना मिलता है, तो वहां के गवर्नर ने ये हुक्म दिया कि जो स्कूल है सारे जिनको रेगुलर फूड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो इस्लामी स्कूल है उनका खाना बंद कर दो, ओनली इस्लामी स्कूलों को कोई खाना नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। तो उसके नतीजे यानी दिस इज द लेवल दे हैव गॉन टू क्रिएट दैट हाइप ऑफ इस्लामोफोबिया, और टारगेट अगर सामने नहीं होगा तो वोट कैसे मिलेगा, फिर लोग घरों से कैसे निकलेंगे। तो दैट कैंपेन हैज, लेकिन चंद बुनियादी चीजें जो पॉजिटिव हैं, जो खुशाइंद हैं, 9/11 के बाद दाढ़ियां कटी थी, 9/11 के बाद हिजाब उतरे थे, 9/11 के बाद नाम बदले थे, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, उसके बाद जो जेनोसाइड हुआ, तो मुस्लिम्स बेसिकली टुक आउट द शैकल्स ऑफ फियर, उन्होंने जितने खौफ की जंजीरें उतार के फेंक दी, एंड दैट वाज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नाइन, क्योंकि मैंने तो दोनों दोनों अद्वार फर्स्ट हैंड देखे ना, मस्जिदें भर गईं, नौजवान सड़कों पे आ गए, इस्लामी तंजीमों ने खुल के बात की, सारे इस्लामी लीडरों ने खुल के बेशतर ने, सारे तो ने बेशतर ने स्टैंड अप किया, हमने 4 लाख अफराद का मुजाहरा व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर किया, और मुझ समेत जिन लोगों ने तकरीरें की वो बिल्कुल क्लियर बगैर खौफ के। तो ये जो गजा ने इस्लाम को अमेरिका में भी जिंदा किया है ना, कि जो बात है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो जो गजा का करबला हुआ उसके बाद इस्लाम अमेरिका में भी जिंदा हुआ है, और उसके नतीजे में खौफ की फजा कम हुई है, नौजवान सड़कों, मर्द बूढ़े और यंग औरतें बिलखुसूस ख्वातीन, और यही नहीं हुआ पॉलिटिकल एक्टिविज्म, यानी आप
0: नहीं,
1: सोचिए
0: मैं
1: कि
0: आपकी वो तस्वीर भी देख रहा था जब आप व्हाइट हाउस उधर वाशिंगटन डीसी में खड़े थे जनाब, एक अजीम शान जो है वो एक मुजाहरा हुआ है फलस्तीनियन के हक में, और आप से बहुत सारे मुसलमान लीडरों ने उसको उसको लीड किया है, और इट वाज ए इमेजिंग सीन, क्योंकि अमेरिका में ये खौफ मतलब उस वक्त इवन ट्रंप मौजूद हों और उनके सामने वाशिंगटन के अंदर ये मुजाहरे का हो जाना और लोगों का निकल आना, ये भी एक बहुत अमेजिंग बात है। मतलब जिस तरह आपने अभी कहा कि शैकल टूटे हैं खौफ के।
1: जी हाँ, तो बस 9/11 से लेकर अब तक ये मुख्तलिफ अदवार से हम गुजरे हैं, इस्लामोफोबिया ऊपर नीचे होता रहा है, इस्लाम का खौफ दिलाया, वहाबीज्म से लेकर आज शरिया तक, एक शरिया, आपको पता है कांग्रेस के अंदर एक एंटी शरिया कॉकस बना है, एंटी शरिया कॉकस, और अब तक 50 कांग्रेसमैन उसका हिस्सा बन चुके हैं, और सबको पता है ये बेवकूफ बना रहे हैं। शरिया कैसे आएगा, 2% मुसलमान अगर 3% है तो शरिया कहाँ से आएगा? बट जस्ट बिकॉज टू क्रिएट दैट हाइप ऑफ फियर, फियर मॉन्गरिंग, एंड और जो यहाँ की रूरल अमेरिका है उसमें लोग रेडनेक्स जो हैं और जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं उनका तालीम का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है।
0: अच्छा, इस अजीब मुझे बताइए कि अभी आपकी, मैं देख रहा था कि क्योंकि आप जो गवर्नमेंटल एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स के चेयर भी हैं इकना की तरफ से, तो ये मुझे आप बताइए कि ये जो आपने अभी बहुत सारे कांग्रेसमैन से मुलाकात की है और पॉलिटिकली जो है वो माशाल्लाह मैंने देखा है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि कुछ एक कांग्रेस वुमेन्स और कुछ अफराद जो हैं वो अलग अलग पार्ट ऑफ द कांग्रेस हैं इस वक्त यूएसए के, एक बहुत बड़ी मतलब कामयाबी है ये भी। फिर न्यूयॉर्क के मेयर जो हैं वो जनाब, वो आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इस तमाम पॉलिटिकल चेंज को आप कैसे देख रहे हैं और आपकी क्या बात हो रही है कांग्रेसमैन से जब आप गुफ्तगू करते हैं, तो वहां क्या मौजूद गुफ्तगू है?
1: देखिए, अभी पिछले हफ्ते की बात है कि मुसलमानों की सारी तंजीमों जिसमें इकना सबसे आगे थी और सबसे बड़ा हिस्सा भी इकना का था, हम हर साल वॉशिंगटन डीसी में जमा होते हैं पिछले 11 साल से, और वहाँ हम जाके कांग्रेस के ऐवानों में और हुकूमत के ऐवानों में सेनेटर से जाके मुलाकातें करते हैं, और आप वहाँ जाएं तो हर तरफ हिजाबी खवातीन और फलस्तीनी रूमाल के साथ लोग कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन के दफ्तरों में जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और उसको अपने हम मुतालबात, तयशुदा मुतालबात होते हैं, तयशुदा मीटिंग्स होती हैं, तयशुदा स्पोक्स पर्सन होते हैं। तो इस मरतबा तारीख का सबसे बड़ा अटेंडेंस थी हमारे 1100 लोग, 1100 लोग 2 दिन मुसलसल अमेरिका के ऐवानों में घूमते रहे, और उनमें से 70 से 75% लोग वो हैं जो नौजवान थे, नौजवान लड़के, और उस पूरे दस्ते में सबसे बड़ा रोल इकना का था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बेशुमार लोगों से मिले, 255 मीटिंग्स हुई हैं कांग्रेस मैन और कांग्रेस वुमेन के मुख्तलिफ ऑफिस में, बहुत सारे हम कांग्रेस मैन वुमेन से मिले और बहुत सारे हम उनके लेजिस्लेटिव इंचार्जेस से मिले, चीफ ऑफ स्टाफ से मिले, स्टाफ से मिले। तो उन मीटिंग्स में हमने 3 मुतालबात सामने रखे, वेरी क्लियरली वी हैड 3 आस्क, और वो तीनों आस्क, एक तो एंटी शरिया बिल के बारे में था, मैं बहुत तफसील से तो नहीं बताता हूँ, क्विकली बताता हूँ। एक तो ये था कि एंटी शरिया बिल है इसको कैसे एंगेज किया जाए। हमने वहां लोगों को बताया कि हाउ स्टूपिड, हाउ रॉन्ग इट इज टू टॉक अबाउट एंटी शरिया, और यानी यहाँ तक हुआ कि मेरे हमारे इलाके का जो कांग्रेस मैन है उसके दफ्तर में जब हमारे लोग गए उससे पूछा, मैरीलैंड का, हमारे इलाके के तो मैरीलैंड का, मैरीलैंड के मजाफाती इलाके का, तो उसके पास गए, उसे कहा कि आप एंटी शरिया बिल का हिस्सा हैं? उन्होंने कहा यस वी आर प्राउड ऑफ इट। नौजवान ने जो इत्तेफाक से मेरा बेटा ही था उसने पूछा कि डू यू नो व्हाट शरिया इज, तो उसने एक तरफ कहा कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ एंटी शरिया, उससे पूछा डू यू नो व्हाट शरिया इज, सेड नो आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट शरिया इज। आप लेवल देखिए कि दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो पहला हमारा मुतालबा एंटी शरिया है तो एजुकेशन के व्हाट शरिया इज एंड व्हाई इट इज रॉन्ग टू हैव समथिंग लाइक दैट। एक दूसरा हमारा था शख्सी आजादी पर, इंडिविजुअल जो पूरा ये मिस्टर किंग बन गए, पहली मरतबा अमेरिका में ऐसा लगता है बादशाहत आ गई है, तो जो क्रैक डाउन हुआ है शख्सी आजादी पे, चाहे वो महमूद खलील हो, चाहे और जितने लोग हैं पूरे अमेरिका में जिन्होंने भी थोड़ी सी भी बात की है फलस्तीन की हिमायत में, उन पर क्रैक डाउन, फिर उसी में जो आइस के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, फिर उसी में उसी तरह इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, झूठा जहर, बिल्कुल झूठा जहर, तो वो जो लोगों की शख्सी आजादी पे हमने

0: अमेरिका के नौजवानों में एक पूरी नई सोच पैदा की है। एंड अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दुनिया से उठाना है उसका तो वक्त मुतय्यन है, तो वो 80,000 1 लाख लोग जो शहीद हुए उनको तो इसी वक्त दुनिया से जाना था, लेकिन मरहूम, यार कहिए आप, मैं आखिरी बात बल्कि कहता हूँ, मरहूम काजी हुसैन अहमद साहब कहते थे कि इंसान जब दुनिया से जाए, एक शहीद के नमाज जनाजा पे उन्होंने ये बात कही, दुनिया से जाने का वक्त तो था इनका, लेकिन दुनिया से जाते वक्त इससे बेहतर तरीका क्या होगा कि इंसान आखिरत की वादी में शहादत के दरवाजे से दाखिल हो। और यही 1 लाख फलस्तीनियों का मामला है कि वो दुनिया से उसी वक्त गए जब जाना था, लेकिन वो शहादत के रास्ते दाखिल हुए और उसकी बरकतें हम पूरी दुनिया में उसके असरात को देख रहे हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि आप इतने ज़्यादा, मैंने आप शुरू में जैसे कहा कि इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड अंदाज़ में काम कर रहे होते हैं, और एक इदारा है हेल्पिंग हैंड, उसने रिमार्केबल काम किया है। कराची के हवाले से इतनी खबरें आती हैं कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा, वहाँ कुछ है नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तकरीबन कोई 40-50 साल से, तो मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर मौजूद है, और जो हाल कराची का हुआ है, एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जो कराची का हाल बनाया वो सब हम जानते हैं। लेकिन बहरहाल हेल्पिंग हैंड ने जो रिमार्केबल काम किया है कि आपने वहां न्यूरोलॉजिस्ट का एक इंस्टीट्यूट कायम कर दिया, जिसको किंडर जिसका नाम है, आपने खुद जाके उसका इफ्तिताह भी किया है, और माशाल्लाह से इट वाज एन इमेजिंग इन अमेजिंग वर्क। तो थोड़ा सा हमें इंस्टीट्यूट के हवाले से भी बताएं कि ये इंस्टीट्यूट के अंदर कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, और ये किन किन डिजीज के हवाले से जो है ना वहां पे काम करेगा। और मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद आपकी और आपकी पूरी टीम को भी देता हूं कि कराची को इस तरह के अस्पतालों की, कई अस्पतालों की यकीनन जरूरत है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और आपकी पूरी टीम को यकीनन इस बात का जजा दे। तो पहले तो हमें बताएं कि इंस्टीट्यूट के हवाले के ख्याल आया क्यों है, एक ख्याल क्यों आया इसका, और किस तरीके से ये कितने अरसे में बन गया ये।
0: ये ख्वाब हमने 10 साल पहले देखा था, 10 साल पहले इस पे काम शुरू हुआ था, और उस वक्त दिल में ख्याल ये था कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी ना थे।
1: हाँ माशाल्लाह
0: ख्वाब ऐसे देखा कि 10 साल पहले उर्दुगान साहब की हुकूमत की दावत पे हम इस्तांबुल गए एक दौरे पे, एक होटल में वो हमें लेके रेस्टोरेंट में खाने के लिए लेके गए, तो उस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था अप स्केल, तो वहां दरवाजे पे जो दरवाजा जिस फर्द ने खोला और जब हम जाके बैठे, सर्विस हुई, जनरल मैनेजर, कैश, जितने लोग थे उस रेस्टोरेंट के, वो सारे के सारे डाउन सिंड्रोम के लोग थे,
1: अच्छा
0: मजदूर लोग थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये आप इतना सारा काम, मैंने वो मेजबानों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि ये माशरे में इन लोगों की हैसियत आमतौर पे एक मफलूज लोगों की होती है कि ये कुछ नहीं कर सकते, हमने इनको यूजफुल बनाया, अब इनमें से हर फर्द की सलाहियत मुख्तलिफ थी, उसकी सलाहियत के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया, और आज ये अपने आप को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, अपनी फैमिलीज के लिए भी अर्न कर रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया, और मेरे दोस्त जो इस वक्त प्रोफेसर है न्यूरोलॉजी के आ खान अस्पताल में, बहुत मशहूर, दुनिया भर में मशहूर है, डॉक्टर डॉक्टर वासे, उनसे मैंने कहा कि यार वासे हमें कुछ पाकिस्तान के लिए भी, तो पाकिस्तान में तो कोई आदमी को जरा सा फालिज हो जाए, हल्का सा माजूर हो जाए, वो सारी जिंदगी बिस्तर पर रहता है, कहते हैं माजूर हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकता, यानी पाकिस्तान व्हील चेयर भी नहीं है, उन लोगों को तो गोद में उठा के आप अस्पताल लेके जाते हैं, आपने देखा होगा। हमने सोचा पाकिस्तान में इस तरह का कोई इदारा कायम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कैंसर के अस्पताल बन गए हैं, पाकिस्तान में हार्ट के अस्पताल बन गए हैं बड़े बड़े, लेकिन
1: किडनी हॉस्पिटल है, कैंसर है, मुख्तलिफ चीजों के अस्पताल है, बिल्कुल है।
0: पाकिस्तान में माजूरों का कोई अस्पताल नहीं है, कैन यू बिलीव इट, और वो भी जो बहुत अप स्केल हो, बहुत शानदार हो। तो हमने 10 साल पहले उसका ख्वाब देखा, उस पर काम शुरू किया, पूरे डॉक्टर्स की, टॉप नॉच डॉक्टर्स अमेरिका और पाकिस्तान के जमा किए, उनकी एडवाइजरी काउंसिल बनाई। 2016-17 में हमने पहली बिल्डिंग खरीदी वहां पाकिस्तान में 7-8 करोड़ रुपए की, फिर हमने उस पर काम शुरू किया, उसकी रिफर्बिशिंग की, उस ख्वाब को हमने अमली जमा पहनाने की कोशिश की, मिलते रहे, काफला बनता गया। अब तो हुआ ही है कि हमने उसको उस पे फंडरेजिंग की, हेल्पिंग हैंड इस वक्त अमेरिका की सबसे मकबूल रफाई तंजीम है जो एकरा के तहत काम करती है। हेल्पिंग हैंड हर साल हर साल पाकिस्तान में 17 से 20

0: डॉलर खर्च करती है वैसे ही।
1: अच्छा
0: लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट को, आपको पता है ये प्रोजेक्ट जो है, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू हियर, इस प्रोजेक्ट का कुल तखमीना 60 मिलियन डॉलर है, 60।
1: ठीक
0: और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अस्पताल जो वेल इक्विप्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट। तो हमने इस पे 10 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट पहला फेज कंप्लीट कर लिया। अभी
1: वाह
0: जाके हमने उसका इफ्तिताह किया है। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस अस्पताल में जाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है, देयर इज नो हॉस्पिटल लाइक दैट। उसमें न सिर्फ ये कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनें हैं, बेस्ट डॉक्टर्स हैं, रोबोटिक एआई जनरेटेड मशीनें हैं जो पाकिस्तान में किसी अस्पताल के पास नहीं है, और सबसे अहम बात, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा कोई नहीं देता उसमें।
1: माशाल्लाह,
0: और
1: दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। बिकॉज फ्री ऑफ
0: तो
1: कॉस्ट तो मैं मुझे पता है कि बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े बड़े लोगों के नाम से वहां बनाए गए हैं, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। जी
0: और अब हमारा इरादा यह है कि हम उसके साथ मेडिकल कॉलेज भी शुरू कर रहे हैं,
1: अच्छा
0: और हम 130, पाकिस्तान के पूरे 130 जिलों में इसकी शाखें बना रहे हैं, जो इसके क्लिनिक्स होंगे। इसमें एक ऑलरेडी हमने आर्टिफिशियल लिम का जो मस्नूई अज़ा के बनाने की फैक्ट्री अंदर लगा दी है। अस्पताल ऐसा है, आप जाइए, आपको लगेगा आप अमेरिका के सिंगापुर के अस्पताल में है। वहां जॉगिंग ट्रैक भी है, वहां स्विमिंग पूल्स भी हैं, वहां जिमनेजियम भी है, क्योंकि ये सब चीजें रिहैब के लिए
1: डॉक्टर
0: चाहिए।
1: साहब, एक एक साहब है यहाँ हमारे कैलगरी में, डॉक्टर नवेद सैयद साहब, उन्होंने एक अमेजिंग काम किया है कि वो स्टेम सेल के ऊपर ना चिप्स बनाई है उन्होंने, और वो चिप जो है ना माइंड के ऊपर लग के वो जो डिसेबिलिटीज है ना उसको उसको ठीक कर सकती है। उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की, उनको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। मैं यकीनन जो है ना उनसे इस हॉस्पिटल के हवाले से ज़ाती तौर पर भी जिक्र जरूर करूंगा मैं उनसे इस हवाले से कि यकीनन जो है ना ये अमेजिंग आप काम करने जा रहे हैं। फिर वहां पर आपने कहा है कि आप वहां पर जो है वो यकीनन जो है ना वो स्कूल भी बनाने जा रहे हैं, फैकल्टी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला अजीम। तो मेरा ख्याल है कि इज अमेजिंग वर्क यू ऑलरेडी डिड, और हमारे पास टाइम आपको पता है महदूद होता है। एक आखिरी बात ईरान और अमेरिका के हवाले से सिर्फ मैं कर देता हूँ कि ये बता दें कि वो ये जो फाइनेंशियल इस वक्त मुश्किल आई हुई है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, इसकी वजह से आम लोगों में क्या तासुर है?
0: देखिए, दो बातें, ईरान को शैतान बना के प्रेजेंट किया गया है 40 चार दहाइयों से अमेरिका में।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: एक हर पार्टी, चाहे वो डेमोक्रेट हो, चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे वो सीएनएन हो, चाहे दे ऑल स्पीक द सेम सेम लैंग्वेज। तो ईरान के हवाले से तो एक तासुर पूरा बनाया गया, तो लगता ये था कि जब वो अटैक होगा तो उसकी सपोर्ट होगी, जो एक तरीके से थी भी, क्योंकि वो जो मफरूजा है कि उनको, उनके पास एटम बम ना हो, वो सारे काम उन्होंने। लेकिन जब पेट पे लात पड़ती है, जब जेब खाली होती है, तो सारी बाकी बातें इंसान भूल जाता है। तो आज सुबह ही मैं सीएनएन में एक कमेंट्री सुन रहा था कि एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन एन अमेरिकन हाउस होल्ड इज $400 पर वीक,
1: पर वीक, ओ माय गॉड,
0: पर वीक। नाउ यू कैन इमेजिन कि जो गैस $2 की मिल रही थी, या $5 की मिल रही है पर गैलन, और कैलिफोर्निया में आज के नंबर हैं कि डीजल इज $8 पर गैलन, अनहर्ड ऑफ, सिंपली अनहर्ड ऑफ। तो ये जब पेट खाली होना शुरू हुआ है, जेबें खाली होनी शुरू हुई है, तो देयर इज अ रिएक्शन। तो इट्स एन अनपॉपुलर वॉर इन अमेरिका, सारे जो पोल्स हैं वही शो करते हैं, अक्रॉस द बोर्ड इट्स एन अनपॉपुलर वॉर।
1: ठीक,
0: ईरान के बारे में वो नेगेटिव मनफी तासुर मौजूद है,
1: हाँ
0: लेकिन वॉर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वर्सेस वॉर खत्म होनी चाहिए, वर्सेस ये जो जेबें खाली हो रही हैं, इस पे शदीद रिएक्शन है,
1: वो
0: एंड इट इज समथिंग विच इज हर्टिंग देम।
1: शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर मोहसिन अंसारी साहब, आपने टाइम दिया, वक्त निकाला, और आपसे तो इतनी सारी गुफ्तगू होनी थी, लेकिन बहरहाल क्या करें, हमारे पास भी बहुत बड़ा महदूद होता है। हमारे नाजरीन को उम्मीद है आज का जो ये प्रोग्राम है इसमें पसंद आया। हमने कोशिश की कि डॉक्टर मोहसिन अंसारी की जो हम जहाँ शख्सियत है उस हवाले से बात की जाए, और उस हवाले से कि क्या क्या काम हमें, और जो इस वक्त आलमी तनाजुर है और अमेरिका के जो सूरत हाल है, मुसलमान तंजीमों की सूरत हाल, तमाम चीज़ों के ऊपर हमने कोशिश की कि सहल अफजा आपसे गुफ्तगू की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका।
0: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
1: वालेकुम। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा कि हम इसके अलावा जो आज मुझे बात करनी थी लेकिन टाइम बड़ा वक्त कम है, और वो ये था कि स्प्रिंग बजट जो है वो ऑलरेडी कनाडा का आ गया और उसके अंदर मार्क कार्नी साहब ने जो है बड़ा ज़बरदस्त बजट पे लेकर आए हैं, मिनी बजट इसको कह लें आप, आप कह लें कि सेमाई बजट कह लें, लेकिन बहरहाल ये कि एक ज़ोरदार बजट आया है, इसके अंदर डेफिसिट भी कनाडा का कम दिखा रहा है और बहुत सारे जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है शुरू किए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि किसी इकोनॉमिस्ट के साथ बैठकर जो है ना इस हवाले से भी गुफ्तगू करें कि इसके असरात आम आदमी पर क्या पड़ेंगे और आम तौर और ये जो इतना मुश्किल मरहला इस वक्त गुजर रहा है कनाडा जो है वो अमेरिका ने एक तरफ टैरिफ बढ़ा दिए हैं, दूसरे ये ईरान वॉर की वजह से ऑयल की क्राइसिस और दूसरे क्राइसिस जो आ रहे हैं उसके बावजूद कनाडा जो है वो बेहतर कर रहा है और ये फिजिकल एयर ने ये साबित किया। बहरहाल माइक मार्क कार्नी साहब जो एक ज़बरदस्त किस्म के इकोनॉमिक मैनेजमेंट तो करते हैं, अब ये कहीं नंबर की हेरा फेरी ना हो इस हवाले से जो है ना थोड़ा सा हमें डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला जो है ना हम जब आएंगे तो इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: वेलकम टू आइकॉन इवेंट स्पेस, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, ICON is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
2: At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves,
3: which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases.
4: Our legal team comprises many legal professionals.
5: Every individual deserves dedicated legal representation.
6: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today

0: then let Talhavati serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties, special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talhavati, 647-295-7861. Then let Talhavati serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसेस सागर रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
2: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
3: You know, we were always trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage?
4: Oh yes, Shiraz Hussein, who did our mortgage too.
3: Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. The expert in their services. And you know what Shiraz said?
5: We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders. And program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise.
6: Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams.
7: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए, इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के, वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
8: A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law.
9: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
10: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ, मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
11: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
12: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. The Law Professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca.
13: Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007.
14: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.
15: Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction, and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate.
16: Team Farhan, ko ek dafa khidmat ka zaroor mauka dijiyega. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed.
17: At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you.
15: 416-569-9294, teamfarhan.com.
18: Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca.
7: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677

0: अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त टोरंटो 360 की जानिब से इरफान बाबा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और शहर का एक बड़ा मशहूर बिजनेस लिंक, जिसको आप कहते हैं बिज लिंक, जो बिजनेसेस को जोड़ता है, ये होने जा रहा है इधर। यहाँ बहुत सारे बिजनेसेस आए हैं, कम्युनिटी में ऐसी चीजें होनी चाहिए, बिजनेसेस प्रमोट करने चाहिए और बिजनेस बढ़ने चाहिए। जितने बिजनेस बढ़ेंगे हमारी कम्युनिटी उतनी ही मजबूत होगी, और इस मजबूती की जामन है हमारी फौजिया जी, और इन्होंने आज ये बिज लिंक के तहत ये पहली एक कॉन्फ्रेंस समझ लें, एक एग्जीबिशन समझ लें, या एक कम्युनिटी मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम बिजनेसेस का समझ लें, वो किया है। और हम आपको इसकी झलकियां वक्तन फक्तन दिखाते रहेंगे। मैं इस वक्त अपने कुलीग साबर गाया साहब के साथ हूं और मैं फौजिया जी से बात करूंगा। फौजिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
1: थैंक यू।
0: इतना जबरदस्त शो करने का, इतनी जबरदस्त एफर्ट करने का, सोल्ड आउट, फुली बुक्ड शो है आपका, और बहुत सारे हम बैनर देख रहे हैं, जैसे कि नाजरीन भी देख रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे?
1: थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बिजलिंक कनेक्टिंग बिजनेस मेरी एक ऐसी कोशिश है जिसमें मैंने ये चाहा था कि टोरंटो के टॉप नॉच बिजनेसेस का आपस में मर्ज हो। ना सिर्फ ये कि हम सब खुद अकेले ग्रो करें, बल्कि एक दूसरे के बिजनेसेस को भी ग्रो करने में सपोर्ट करें। और आज वो दिन आ चुका है, यानी बिजलिंक 2026, यानी अप्रैल 18 को इस वक्त हम मौजूद हैं अपोलो कन्वेंशन सेंटर में, और वक्फे वक्फे से हम आपको अपडेट्स करते जाएंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। यहाँ पे हर किस्म का बिजनेस आपको मिलेगा। बिजलिंक इज बेसिकली वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर नीड्स। थैंक यू।
0: थैंक यू वेरी मच। फौजिया जी, ये बताइएगा कि आप तो बड़ी कामयाब मॉर्गेज ब्रोकर हैं, ये इतने बिजनेसेस जो आप इकट्ठे कर रही हैं और ये जो लिंक कर रही हैं, इसमें चूंकि आप बिजलिंक की सीईओ भी हैं, आप इनकी ओनर भी हैं, तो इससे आपको क्या क्या फीलिंग मिल रही है, क्या सक्सेस मिल रही है, क्या आपका क्या सेटिस्फेक्शन?
1: जी, बहुत प्यारा सवाल है। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। मकसद बिल्कुल वही है कि ना सिर्फ खुद ग्रो करना है, बल्कि अपने कम्युनिटी में, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को खास तौर पर आगे लेकर आना मेरा मकसद था। हमारे दरमियान आज की शाम आपको कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर्स मिलेंगे जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हम आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। और मकसद एग्जैक्टली वही है कि ना सिर्फ ये कि हम खुद अकेले ग्रो करें, बल्कि मिलके अपनी कम्युनिटी को कैनेडियन बेस्ड कम्युनिटी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाएं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फजल जी, आप बहुत मसरूफ हैं, टोरंटो 360 को टाइम देने का शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर साथ साथ चलते रहेंगे, और फिर आखिर में आके फिर आपको आपसे पूछेंगे रात को कि ये कैसा शो रहा। नाजरीन, आप हमारे साथ रहें, हम आपको झलकियां दिखाते रहेंगे, आपसे लोगों की बात कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान बाबा मलिक टोरंटो 360 की जानिब से, साबर गाया अपने उस्ताद मोहतरम के साथ। थैंक यू जनाब। इस वक्त हम डॉक्टर शाहिना किशोर जी के साथ मौजूद हैं, शहर की इंतहाई पढ़ी लिखी खातून, बल्कि लोगों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। मैंने पढ़ी लिखी का लफ्ज़ तो एक तकल्फन इस्तेमाल किया, ये पढ़ाने वालों में से लिखाने वालों में से हैं। तो डॉक्टर साहब, ये आप बिजलिंक की कॉन्फ्रेंस पे आप आई हैं, तो आपके क्या तासरात हैं?
2: जी सबसे पहले तो मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ये बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम फजिया फसी साहिबा ने अरेंज किया है, जिसमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी को ये मौका दिया गया है कि वो अपने आइडियाज शेयर करें और अपने बिजनेस को प्रमोट करें और एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करें और कोऑर्डिनेशन के साथ चलें, ताकि हमें एक ही जगह पे बहुत से जब बिजनेसमैन मिल जाते हैं, बिजनेस वेमेन मिल जाती हैं, तो हम शेयर करके हम एक ही जगह पे बहुत सी जो फील्ड है उसको कवर करते हैं। तो माई हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एंड थैंक यू टू यू।
0: थैंक यू।
2: थैंक यू।
0: नाज़रीन, इस वक्त हम चौधरी निसार साहब के साथ मौजूद हैं, और जो कि मीडिया में एक खास मुकाम रखते हैं, शहर के पढ़ाई लिखाई में खास मुकाम रखते हैं, और बड़े बड़े मालूमती प्रोग्राम, बड़े मुतहरक कम्युनिटी लीडर भी हैं। चलिए सब, आप तशरीफ लाए हैं बिजलिंक पे, आप कुछ इसके बारे में भी बताएं और अपने तासरात भी बताइए।
3: अरफान बाबा साहब ने जो कहा वो रिवर्स में इनके ऊपर अप्लाई होता है। माशाल्लाह, ये बहुत एक कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत है। टोरंटो 360 का बहुत शुक्रिया, साबर गाया साहब का कैमरामैन है इस वक्त, बहुत शुक्रिया सबका। جہاں تک آج کے اس ایونٹس کے حوالے سے ہے کہ بز لنک جو کہ فوزیہ فصیح صاحبہ اور ایک پوری ٹیم نے یہ ایک یہاں پہ بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور ضرورت ہے اس امر کی کہ لوگوں کو ہمیشہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جائے، جتنے میکسیمم لوگ ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک قسم کی آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک ضرورت بھی تھی سٹی کے اندر. بہت کام اور بھی ہو رہے ہیں، بہت زیادہ آرگنائزیشن بھی کر رہی ہیں. آج ان کا یہ پہلا ایونٹ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ڈفرینٹ قسم کے ورسٹائل لوگ آئے ہوئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آگے یہ لوگ آپس میں نیٹ ورکنگ کر کے کمیونٹی کو فائدہ دیں گے اور آگے بڑھیں گے. جیسے میرا اپنا ہے تو میں صابر گیا صاحب اور ملک صاحب آپ کی وساطت سے اور ٹورنٹو 360 کے والے سے المصطفیٰ کینیڈا ایک چیریٹی ورک میں میں انوالو ہوں، وہ میرا چیریٹی ورک ہے، والنٹیئر ہے. میرا خود اپنا بزنس جو ہے ای کامرس کا ہے، میں بزنس کوچ کرتا ہوں، لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہوں. کسی کا ڈیڈ بزنس ہو رہا ہو اس کو انالیسس اس کے انالائز کر کے اس کو کوچنگ کر کے اس کو بیچنے تک ہیلپ کرتا ہوں. مینلی میرا کمرشل کا کام ہے اور بزنسز کا کام ہے. ای کامرس میں کسی نے کوئی ٹریننگ لینی ہو وہ میرے سے لے سکتا ہے، میرے نیٹورک کے امریکہ کینیڈا دونوں کنٹریز میں ہیں، ورلڈ وائڈ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ میرے امپلائیز ہیں.
0: بہت شکریہ چاری صاحب.

0: को भी प्रमोट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मलिक साहब आपके साथ मिलके हमेशा खुशी होती है, आप हमारी कम्युनिटी की जान है, हमारे प्यारे दोस्त हैं, हमेशा बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ। और आप अपने आप को जब दूसरे को इज्जत देते हैं तो अल्लाह ताला आपकी इज्जत को हमेशा ऊपर लेके जाता है, ये एक हमने देखा है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके अल्फाज का, यही अल्फाज में आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं एक बड़ा

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड गुड इवनिंग. इट्स एब्सोल्युटली माय ट्रू ऑनर एंड प्लेजर टू स्टार्ट दिस वंडरफुल इवनिंग. सो वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट फॉर दिस नेटवर्क डिनर होस्टेड बाय बिजलिंग. इट्स ए प्लेजर to have such a wonderful group of professional gathered here. This evening is all about building meaningful conversation, sharing ideas, enjoying great conversation in a relaxed setting. We hope that you all take this opportunity to meet new people, strengthen existing relationship and make the most of the time together.

0: I'm here as an e-commerce business owner and representing Al Mustafa Canada. You already watched the movie. Everything is covered there. I just want to say thank you very much for the opportunity. And the work you are doing is wonderful. Stay connected, stay tuned, stay with BizLink. Wonderful team. And if you have any questions, I'm here. My own business is e-commerce. I know this is the BizLink platform. A lot of people are physically working. They have the companies. But if somebody want to learn and understand how the e-commerce business work, ask me questions. And there is then a website I just want to share with you. Enabler. They are very focused. They have very great opportunity for the business learners. If you want to learn, join them. And if you have any question, ask me. Please support Al Mustafa Canada. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.
1: फौजिया फसी ट्रोलिंग के निशाने पर भी होती हैं और ट्रैवलिंग के भी. किसी तकरीब में ना मिलें तो समझ जाएं किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं. और इनके बल्कि हम सब पाकिस्तानियों की ट्रैवलिंग में यहाँ कनाडा से साथ होता है अलमास राशिद का मैचलेस ट्रैवल. और एक नाम तो यहाँ बार बार गूंजा है, अवार्ड भी लेकर गए हैं कनाडा में. अकाउंटिंग, ऑडिट और टैक्स सर्विसेज के बगैर बिजनेसमैनों का गुजारा नहीं. ये काम इदारे भी करते हैं और घरों में बीवियां भी. इस हवाले से खालिद उस्मान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं. कनाडा में एक खूबी यह भी है कि यहां घर खरीदो या किराए पर लो, तीन चार अप्लायंसेस मुफ्त मिल जाते हैं. बाकी अप्लायंसेस की जिम्मेदारी सलीम चौधरी साहब ने उठा रखी है. डिक्सी रोड पर अगर कोई पाकिस्तानी कारोबार सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो सलीम चौधरी और उनकी डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है. ये आपका घर ऐसे भर देते हैं जैसे जहेज मिला हो. पाकिस्तानी दीवारें गंदी करने के मामले में मशहूर हैं, मगर जगरिया मुजाहिद होम पेंटर सर्विसेज के लिए मशहूर हैं. ये कहते हैं मुझे दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है. कोई भी वॉल उनके हाथ लग जाए तो वो गंदगी से पाक हो जाती है, चाहे फेसबुक की वॉल क्यों ना हो. बैरिस्टर और सॉलिसिटर ना हो तो लड़ाई झगड़े कैसे हल हों. हमारे वकील सफदर हुसैन इस मामले में माहिर है. पाकिस्तान में होते तो यकीनन इमरान खान उनकी खिदमत हासिल करते. बासमती चावल के सबसे बड़े व्यापारी शहरोज चौधरी. मुफलिसी में सिर्फ आटा ही गीला नहीं होता, कभी कभी चावल भी गीले हो जाते हैं. इसीलिए पकवान बासमती सबसे बेहतर है. इसे शौहर भी उबाल सकते हैं बशर्ते के बीवी में उबाल ना आया हुआ हो. खैर, यहां इतने बिजनेसेस हैं और इतने बिजनेसमैन हैं कि रात बीत जाएगी मगर हमारे बिजनेसमैनों का जिक्र खत्म नहीं होगा. अब अल्ट्रासाउंड भी हमारे पाकिस्तानियों के हाथ आ चुका है. डॉक्टर खलील अहमद कैनेडियन अल्ट्रासाउंड इंस्टीट्यूट चलाते हैं. इनके लिए जरा एक जोरदार तालियां. और साथ साथ इनसे पूछना है कि क्या हमारे जनरल्स का भी अल्ट्रासाउंड मुमकिन है. क्रिकेट के बगैर पाकिस्तानी नहीं. ब्रैम्पटन क्रिकेट चैंपियनशिप फैसल मुरीदीना साहब की सरबराही में क्रिकेट चला रही है और कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी से ज्यादा अच्छा चला रही है. तो ख्वातीन हज़रात, बहुत लोग और बाकी थे लेकिन वक्त की कमी का एहसास, तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी. शुक्रिया.
2: अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग. इट्स ब्यूटीफुल इवनिंग. थैंक यू. टुडे आई हैव अ honor of preaching in this ajrak. This ajrak is a symbol just like our symbol, our rich Sindhi culture. And you know, this is our

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
6: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
8: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
9: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416।

0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 4372378888। इट्स 4372378888। लाइसेंस नंबर 12458।
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157।
3: जी हाँ, 4165700157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते का नंबर है। खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस हमेशा केस जब सेट होता है उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ अंजुम कुरैशी साहब बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में हैं फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इनका नाम और एक्सीडेंट क्लेम जुड़ा हुआ है। नंबर अपने पास महफूज करें, 4165700157। खुश आमदेद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने सही कहा कि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, जब से मैं लॉ फर्म के साथ जुड़ी हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि 27-28 साल से मैं पर्सनल इंजरी की दुनिया में हूँ। जब आपको इतना लंबा अरसा हो जाता है तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग जहाँ पर भी एक्सीडेंट का नाम आता है, लोग कहते हैं अंजुम कुरैशी का नाम जहन में रहता है। तो जब आपका इतना बड़ा तजुर्बा होता है तो आपको ये बहुत आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपके पास आते हैं या हमारे लॉयर्स के पास आते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है या उनका जिस तरह मुझ पे एतमाद होता है, हम उसको कायम रखें। और हम कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को, इस जो हमारा आपके साथ रिलेशनशिप है, इसको हम जरूर बेहतर तौर से लेकर चलें। लेकिन इसमें जितनी हम कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉयर ने अच्छा काम नहीं किया या मुझे क्लेम नहीं मिला, लेकिन उनको अंदर की सच्चाइयां या ये नहीं पता होता कि जहां पर एक लॉयर की जिम्मेदारी कार एक्सीडेंट को सेटल करना है, वहां पर जो एक जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसकी अपनी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि झूठ ना बोले अपने लॉयर के साथ। आप जो रिलेशनशिप करते हैं, आप जो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। वो समझता है कि आप उसको जो भी बात बताओगे सही बताओगे। यह आज बात मैंने इसलिए निकाली अरशद कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आए, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है आप 911 कॉल करते हो, पुलिस आ जाती है सीन पे, लेकिन कुछ सूरतों में कहा जाता है कि आप कलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर दीजिए क्योंकि वहां पर पुलिस बिजी होती है और माइनर एक्सीडेंट में वो नहीं आती। लोग जब कलिजन सेंटर जाते हैं तो वो अपना पूरा बयान बदल देते हैं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और जाहिर है कि अगर झूठ होता है तो बाज़ वक़्त पता चल जाता है, बाज़ वक़्त नहीं भी पता चलता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाज़ वक़्त जैसे मिसाल के तौर पे अकेले थे, वहां गए स्टेशन और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बराबर में बैठी हुई थी या मेरी बेटी बैठी हुई थी या मेरा दोस्त बैठा हुआ था, कि कलिजन सेंटर जाके जो ना एक पैसेंजर की बजाय दो पैसेंजर लिखवा दिए। पूरा साल एक्सीडेंट चलता रहा, केस चलता रहा। जब सेटलमेंट का टाइम आया और थर्ड पार्टी को डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वहां पर वो जो जो दूसरा ड्राइवर था वो डिक्लेयर करता है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। फिर जाहिर है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े होते हैं और आखिरकार जो सच होता है वही सामने आता है। तो ना सिर्फ आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाता है बल्कि ये फ्रॉड में आ जाता है कि आपने झूठ बोला और बिला वजह एक ऐसे बंदे को आपने एक्सीडेंट में डाल दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसी बातें जो आपके क्लेम को लालच, हर इंसान की फितरत है कि एक लालच होती है कि चलो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपका सही राइट है, जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्लेम का पैसा दे रही है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट का पैसा दे रही है, आपको इंजरी जो है आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे रही है, तो जो आपका हक बनता है उसके लिए फाइट करना कोई मुजायके की बात नहीं है। जरूरी है कि आप करें और आपके साथ एक लॉयर हो, लेकिन झूठ बोल के अपने केस को जेपिटाइज कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, प्लीज खुदारा इन चीजों को समझिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहां पर कानून का इम्प्लीमेंट है। अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो कल को आप किसी और को नहीं कहेंगे कि फलाने ने मुझे कहा था, उसको जाके पकड़ो, मुसीबत आप ही के सर पे आएगी। तो किसी भी किस्म का झूठ इंश्योरेंस कंपनी से मत बोलें ताकि आपके क्लेम को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद है जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। कोई भी आपका कार एक्सीडेंट है, एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट, प्लीज मुझे कॉल करें। मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी 416 5700157 میرا نمبر ہے. بہت بہت شکریہ.
3: بہت شکریہ انجم قریش صاحبہ, اور منڈے انشاءاللہ سے بھی بات کرتے ہیں. تھینک یو. نمبر نوٹ کیجیے 4165700157, 4165700157, ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں ہی فیصلے کرتا ہوں, میں ہی کروں گا, کانگریس جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے. بعض یہ خبریں تھیں کہ ان سے جو ہے اب وہ کیا فیصلہ نہیں کر سکیں گے, ان کی ختم ہو گئی ہے جو کہہ لیجیے اتھارٹی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میری ہی اتھارٹی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران سے بات چیت ہو رہی ہے اور آگے نہیں بڑھ رہی, اور اس کے ساتھ ایران کا کہ 90% ان کی بحریہ اور فضائیہ تباہ ہوگی. بہت سی باتیں اس حوالے سے کی ہیں, تھوڑی دیر میں سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کی اشاری.

भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। तेरी मसरूफियतें जानते हैं, अपने आने की खबर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते। वो मुसाफिर खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। खाक ही अव्वल व आखिर ठहरी, करके जर्रे को गौहर क्या करते। राय पहले से बना ली तूने, दिल में अब तेरे घर क्या करते। इश्क ने सारे सलीके बख्शे, हुस्न से कस्बे हुनर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते।

0: 6609012810. थैंक यू वेरी मच जी,
1: बहुत शुक्रिया मेरे साहब। नेक्स्ट सर उन्हें आपसे बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कर लीजिए 416-901-2810, 416-901-2810, midhafinish.com इनकी वेबसाइट है। रेड पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। ब्रामटन में सबसे ज़्यादा मॉर्गेज डेलिक्वेंसी हो रही, यानी सबसे ज़्यादा मॉर्गेजेस लोग पीछे जा रहे हैं, उसके तीन तीन महीने पीछे हैं और कह रहे हैं कि 20 घर लगते हैं तो एक जो है वो पावर सेल पे। तो थोड़ी देर में इस हवाले से मैं बात भी करूँगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही, ईरान की नई तजावीज़ से मुतमिन नहीं है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो बहुत इज्जत करते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान की क्यादत तकसीम हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों, ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया को आज ज़्यादा खतरा होता, ईरान की क्यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, ईरान की मौजूदा क्यादत उलझन का शिकार है, नेवी और फिजाई सब कुछ तबाह हो चुका है, ईरानियों को यह भी आइडिया नहीं है कि उनकी क्यादत किसके पास है। और दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका को धमकी आमेज लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। लीजाज कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल जनाब आज कल परसों और तरसों मंडे, यानी चार दिन जो है आपको जाना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में। इस वीकेंड पे मदर्स डे की बहुत ही स्पेशल स्पेशल आपको गिफ्ट्स वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और परफ्यूम ब्रांड नेम परफ्यूम्स की बहुत बड़ी वैरायटी आपको हर ब्रांड नेम आपको वहाँ मिलेगा। इसके अलावा फाइन चॉकलेट्स और डिजाइनर सनग्लासेस भी मिलेंगी। लीजा कॉस्मेटिक्स.com पे जाके आप मज़ीद डिटेल ले लीजिए। और अगर हम बात करें टाइमिंग्स की तो सैटरडे 9 से 6 बजे और संडे 10 से लेकर 6 बजे तक आपके लिए ओपन है लीजा कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल। इसके अलावा जो चीज़ आपको बतानी है वो है जनाब विंडोज़ के हवाले से। अगर आपके विंडोज़ और डोर्स पुराने हो गए हैं तो आप कॉल कर लीजिए राइट विंडो फोर्स के सुभानु जी को 416-206-3200। ये मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज़ और डोर्स इंस्टॉल करते हैं और इनसे आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक जो है वो कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर इनकी, आप विंडोज़ और डोर्स अभी इंस्टॉल करवा लें, पेमेंट चाहे एक साल बाद कर दीजिए, कुछ डाउन पेमेंट देनी होगी, सम कंडीशंस में अप्लाई, इंस्टॉलमेंट्स उसके बाद आप बना सकते हैं। कॉल कर कंफर्मेशन लीजिए 416-206-3200। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein aap dekh number 416593003 ek baar phir aapke liye chalenge Mida Furniture Wholesale Gallery Mississauga Brampton Scarborough Cambridge char locations aapko serve karte hain char location ke liye ki number hai 416901 2810 midafurniture.com inki website hai hamare sath ek baar phir maujood hain Paul Mirza welcome you in Radio Pakistan Toronto
1: thank you Bhatti sahab aur Radio Pakistan Toronto sunne wale sabhi behan bhaiyon ko meri Good evening, namaskar, adab, sat sri akal, bilkul Mida Furniture, aapki duaon se char locations seva kar rahe hain, panchvi ka agle hafte aapko address bata denge. Aur rahi baat, aapka ye sab kuch sambhav hua, aapke pyar ki saath, aapka saath mila, pyar mila, badon ka aashirwad, choton ka sneh mila, aur sabse zyada aapne pyar bhi diya, apna valuable business bhi diya, jisse hamari himmat aayi. एक से दो दो से तीन से चार चार से पांच और फिर कंटेनर वाइन आपको फर्नीचर हम सस्ता देते हैं ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता देते हैं और कंपेयर कराने के बाद जैसे भट्टी साहब आप भी बताते हैं कि हमारी प्राइस जो लास्ट प्राइस मिल रही होती है हाँ बोलने देखने में हो सकता है हमारी वेबसाइट पे भी बच्चे लिखते होंगे अप टू 60 अप टू 80 ये तो इधर वेस्टर्न कंट्रीज का एक असूल है कि ऐसे लिखते हैं लेकिन जितनी भी आपको लास्ट प्राइस मिल रही होती है हमारी उससे 10% क्यों कम है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है और जैसे ही पांचवीं का वॉल्यूम शुरू हो जाएगा तो 12% को हम किसी प्राइस को बीट किया करेंगे क्योंकि हमारा डिस्काउंट बढ़ जाएगा और जो कंटेनर में लाते हैं क्योंकि लोकल चाहे एशले फर्नीचर अगर यूएस से लाते हैं तो वो अपना मार्जिन लेते हैं क्योंकि उन्हें वेयर हाउस में यहाँ पे वो स्टॉक करना पड़ता है और जब वियतनाम उन्हीं की फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है तो एक तो फर्क ये है कि यूएसए में टैरिफ लगा हुआ है हमारे कनाडा गवर्नमेंट के जो रूल हैं उनको टैरिफ नहीं लगा हुआ मतलब बहुत बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं जिससे 20-30% और बचत होती है तो वो फिर जो बचत होती है हम तो दो पैसे कमा के रीजनेबल दे रहे थे आपकी वजह से तो हुई मेरा तुझको सौंप दूं वापिस कर देते हैं आपको और वीकेंड आता है तीन चार आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं ताकि बिजनेस मतलब कहते हैं उसे लूजर विनर कई बार कह देते हैं कि आपको अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं और किसी बहन भाई को अगर वो चाहिए जैसे भी कैनेडियन मेड एक्सेप्शनल आपको देने जा रहा हूँ सिर्फ 1099 का वैसे हमारे स्टोर पे हम 1699 मांग लेते हैं कभी थोड़ा मान भी कर लेते हैं $50 डिस्काउंट भी कर लेते हैं लेकिन हम कॉस्ट पे आपको दे रहे हैं 1099 ये देखो ये है हुनस्ती आपको अपनी कॉस्ट बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि 1300-1400 का बेचते भी हैं वो तो मतलब ये एक डील होगी एक बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं स्टोरेज वाला और बेड ड्रेसर मिरर और नाइट टेबल हम 999 का बेचते हैं आपको 799 का देंगे लैकर वाला जो बेड है आप हमारे पास तीन मॉडल है 1699 के आपको आपको चॉइस भी दे रहे हैं मॉडल मॉडल भी हो गया अलग अलग मॉडल हो गया अलग अलग कलर भी हो गया आपको चॉइस होगी कैनेडियन मेड सोफा आपको हमारे पास 399 से लेके जितनी मर्जी रेंज तक लेकिन जो हम जाने जाते हैं जेन्युइन लेदर के लिए बड़े सोफों के लिए कस्टम मेड बनाने के लिए या जो आप एशले के फर्नीचर के फैदर सेटिंग वाले या जैसे और ब्रांड्स हैं उनके लिए आप आए जो भी आप लेना चाहते हैं क्योंकि भट्टी साहब हर एक इंसान की अपनी एक जरूरत है जगह हो सकता है कोई बहन भाई अपार्टमेंट में रहता हो कोई बहुत बड़े मेंशन में रहता है कोई अभी नया आया है हर किसी की एक जरूरत है तो आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए हमने हर प्रकार की रेंज रखी हुई है तो ये ना माना जाए कि हम 399 वाला बेचते हैं तो बहुत सारे कस्टमर आपके भट्टी साहब रेफरेंस से माइकल अमीनी लेने आते हैं माइकल अमीनी का एक सोफा तीन हजार से शुरू होता है लेकिन वो बड़े स्टोरों में वो मिलता है 4500 का हम देते हैं 3000 का तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवर सोल्ड रहता है कि वो मिलता है 2299 का हम बोलते हैं 1499 का पावर लैदर का मतलब एक सोफा है तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं एक बार या फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें बातचीत कर लें अगर आप मुबारक कदम आपके ले आएंगे तो हम आपके एहसान मान लेंगे तो आपको हमारा स्टोर जो हमारे से मिलने का मौका हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा रिश्ता बनेगा और मिड्डा फर्नीचर आपके हाजिर रहे आपकी सेवा में तो आए मिड्डा फर्नीचर 4169012810 4169012810 थैंक यू वेरी मच जी
0: बहुत शुक्रिया मेरे साहब थैंक यू वेरी मच और अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं थैंक यू नंबर नोट कर लीजिए 416-901-2810 416